0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बनने का, जज्बा है आपको पास लाने का, लाने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: रेडियो अमन नेटवर्क,
8: रंग अमन। यमनिम सरो कबाप द्रेव सो कबाप राशे कबी सो वाचा नेत्र दाने वाचा
9: या जा दा कबाप पमंग बांधी डीर दी लेमु में पे हम न छोड़ कड़े दे
10: न गुल काका तासु अमीरा ओले गलम मेल पड़म
9: राजा छ दखले खान दे वरसर खशी
10: न गुल काका जमा पाल दे मैदा के में जख्म दे और पटी बलीगी हजमा में नाराजी
9: गोरा सेवानी तो परुनी बचे और मैदा दे ब्याह खराब था नुस्खा दरता है हम उस लाड़ से आओ दो बड़ा ग्राम हर मेडिकल स्टोर या जर्नल स्टोर ना एसेट गो द मैदे सिरप रावाखला द कम इस्तेमाल न बाद चे बदे मैदा दासीशी चे हुस्पने बाज मवी
10: गुल काका मैदे हुस्पने न हजमई होता सिरा तहकारी छे दमेदी डेर खब होतल ले जुका होता था सत्रे कबाब प्राती दी गुल काका दानु मौरंगी रात ब्याह हुआ या छे सुख बदल सिरप प्राने की
9: नुमिये एसेट गोदे शिन रंग के पे मैदा जोड़ा ला आउ द बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर के खप आसानतिया सरा मिलावीगी दानुमिये उलिका एसेट गो छे हेर डरना निशी
10: गुल काका दस पे लिंग रात हूँ आया चिवी लिखम
9: जदर तवायम तई लिखा ACIDGO
11: कचरिस्ता सुखलेला त्रवी त्रवी उभराजी दरूटे न पसमु प मैदा भूजवी बार बार अडरकी कवे मैदा के मु जखम या तेजाबियत वी नुहुम उस जान ला दमनलिशिवी कंपने दमेदी सिरप एसेट गोरा वाखले कुमची द जिला बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर की प आसानतिया सरा मिलावीगी मेन डिस्ट्रीब्यूटर दे मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोड बटाग्राम दराबितीश मेरा दा 0311-158-7745 बिल नंबर दे 0311-84-33-878
10: द कोर राशन पूरे 5000 रूपए बिल जोड़ शो और पदे गर्मे के द्रे उबेल उबेल दुकानों न चक्कर में हूँ मोला गाओ समस्तड़े शो
12: दादी सराउ दीदी दाऊ गोरा ओड़ो सोमरा गट गट दी लका दल और दी रिजु दाऊ गोरा रिजी कमी और कसकर पकी ज्यादती और दा दाल को बिल्कुल कच कच कारी दुमरे पैसे दी हम खराब इकड़े और क्वालिटी जीरो
10: नजसो कम लाला बाजार के हर दुकानदार खुल द मर्जे नर्ख लगवी और राशन हम दो नंबर राकवी
12: ताता मा सोजल वेले दी आखवा देखा चकरे मलगवा और नीख निलिशंग कराये ना एंड जनरल स्टोर तजा
10: नो हल ता दा सिस्से दी सखास खबर है दलाला
12: हल ता ताता दा यो चत लान दे खवरा औमियारी ओड़ खुशबुदार उरुजे सफा सुत्र दालू ना

0: ये है कमल चाय का पाकिस्तान।
1: दा चल कप समा दे और कप अगर दे वो हल ये कमर दे। कमर चाय द पाकिस्तान नंबर वन चाय, रंग बे मिसाला खंद ला जवाबा। कमर चाय द पाकिस्तान मशहूर चाय दा कुमची द पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान पहर कोर और पहर होटल के इस्तेमाल की।
2: नेमनी नेमनी दोस्त वजल वर्तमा हम द कमर चाय वही दी हो पलाला बई मनी सो दे लाची और द बाजार न बई द कमर चाय पजे नूर भी खुंद चेहरा पा महकड़ी भी
3: दाजल ब कमर चेहरा ओडम खुदा बराता चरता मिलाउशी
1: दा बताता पो बटाग्राम कुजबांडा मेरा बांडीगो चतर प्लेन ताकोट करग और बना बाजारों ने लावा द बटाग्राम और अलाई पहर गट और उड़ू की जनरल स्टोर की मिलावीगी। पो बटाग्राम की द पीएसओ पंप सर नजदीक द सलीम एंड ब्रदर्स दुकान नहम अखस्तले शई द कमर चाय पाड़ा नूर मालूमात पदे नंबरों तरला सकवले शई 0320 900 0020 बल नंबर दे 0314 92 490 83।
4: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली जाए
0: वहीं बनता है
5: ओह खुदाया वादरा निजदेश और जामो ही सपता होने लगेगा टोल बाजार में चाण करो और दस रुख मुंतल और चर्त ची डिजाइन लिखे हुई अल तब बीही आसमान सर खबर कई उधड़े में वही चर्त लाहौर या पे खबर तलाशम
6: खुश खबरी बटग्राम दुकानदारानुला और उदा करेंगे आमो खलकुला ओस पे खबर और लाहौर तदतलो जरूरत निश्त दे दिल तासुर टोलू ता बेहतरीन क्वालिटी अगा मिलावी दिलेशी अवाल वली औजान वली कलच राम क्लाउड हाउस बटग्राम किश्ता नो दबल से गुख्तन सदा
5: राम क्लाउड हाउस बटग्राम खहा अल तसस्ता
6: दहर जा दवस मुताबिक दवदुनो औखादियो द जामो गोरपी का जुनिश्ता मसलन दहगुई द पिंजो सुटुनो पैकेज चिपुखा 15 रुपए वो उस यवाजी पर्श पार्ट स्लिम 0 रुपए की दी चिपके दखादे बकायदा कालीन मरीना खास सूट टिश्यू और प्रिंट शामिल दी
5: वावा दा हुडी रखा मामला दा बल से पैकेज उमिश्ता
6: आओ वाली ना दा हुई बल दा तो सुटुनो वाला पैकेज दी चिपुखा 15 रुपए वो उस यवाजी पर 15 रुपए की मिलावेगी परे की शादी फ्राक निकाह सूट अड्डाना टिश्यू डिजाइनर काटन सूट लॉन प्रिंट स्विस मेहंदी सूट वन पीस लॉन औदा सिनोर शहाना काली शामिल दी
5: रिख्तिया दासी आला क्वालिटी प्रीमियम स्टाइल और दुमना मुनासिब कीमतुना या इंतजार से लपारा राजा ची हम उस लाड़
6: जी नो पता याद साथ ही राम क्लाथ हाउस नसीम मार्केट बटाग्राम और द्वीम ब्रांच दे लेडीज मार्केट बटाग्राम नोर मालूमात दपारा या ऑर्डर दपारा पदे नंबर हुमा राबिता कवली शे 0356575501 अवल नंबर दे 0300 700